दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: Entertainment. हो या अपडेट्स, यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त।

0: स्टेशन ऑफ द नेशन,
1: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: 101FM.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101F.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूम

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे, लाहौर जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

मुझे बात यूं ही मैंने बना रखी है, बना रखी।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बैन अल-अक़वामी कानून, अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर और कसीर अल-जहती तआवुन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनौल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 23 खवारिज को हलाक कर दिया है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फायरिंग और ड्रोन हमलों में 4 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। हयातियाती तनवो का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: दिस इज FM
5: 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
6: सुनते रहिए FM 101।
7: तेरा जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
3: दिस इज FM
8: 101। देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक। One above, FM 101.
9: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: Frenzy.
1: शुक्रिया आपने FM 101 किया। मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: This is FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
7: सुनते रहिए FM 101 101।

0: This is FM 101.
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त मुल्कों चीन, आज़रबाईजान, बांग्लादेश और तुर्की के साथ पाकिस्तान की पायदार शराकत दारी का इरादा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 23 खारिज को जहन्नम रसीद कर दिया। अक़वामे मुत्तहिदा में कायम मकाम अफगान मंदूब ने तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द, गैर कानूनी और अवाम दुश्मन करार दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवा माह की 30 तारीख से रावलपिंडी और लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: There's music. And then there's magic. One above FM 101.

0: This is FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके. दिखाई ना दे. लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: दिस इज FM 101।
6: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
7: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
7: ओ हरफन मौला, ओ हो जाएगा मोमिन, हक जदो सीने लाया दिल होया रोशन, रब

0: सुनते रहिए FM 101.
1: दिस इज FM 101.
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके, आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलकत ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतजल्जल अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ दाराजाती तआवुन और तजुर्बात के तबादले को खुसूसी अहमियत देता है। रेलवे के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक से रेलवे रवाबित बढ़ाने के लिए अहम इलाकाई मनसूबों पर काम कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवां माह की 30 तारीख से रावलपिंडी और लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: There's music, and then. There's magic. One above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: I love FM 101.

0: Generation 101 Tunkia.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: दिस इज FM 101।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101.

0: एजुकेशन 101 ट्यून किया।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
6: सुनते रहिए एफएम 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
1: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
0: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
2: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: दिस इज FM 101.1।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दिस इज FM 101।

0: This is FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दिस इज FM 101।

0: देकर भेजता था कि जाकर ये सामान बेचकर इसके पैसे लाकर दें। इस शख्स ने अपने ग़ुलामों को ये ताकीद कर रखी थी कि जब किसी को कोई सामान फरोख्त करो और तुम ये देखो कि वो शख्स तंग दस्त और मुफलिस है तो उसके साथ नरमी का मामला करना। अगर उसको उधार दिया है तो उससे उधार वसूल करने में बहुत सख्ती से काम मत लेना और कभी किसी को मुआफ़ भी कर दिया करना। चुनाचे सारी उम्र तिजारत के अंदर उसका ये मामूल रहा कि जब किसी तंग दस्त से मामला किया तो या तो उसको मोहलत दे दी और अगर मौका हुआ तो उसको मुआफ़ ही कर दिया। इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अच्छा ये मेरे बंदों को मुआफ़ करता था तो मैं इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक हूँ कि इसको मुआफ़ करूँ। चुनाचे फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इससे दरगुज़र का मामला करो और इसको जन्नत में भेज दो। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा और अल्लाह ताला से मोहब्बत की लाजमी शर्त यह है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की जाए और अल्लाह की मखलूक पर शफ़क़त और रहम किया जाए। जब तक ये चीज़ हासिल नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा झूठा होगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी और अपनी मखलूक की मोहब्बत पैदा फरमा दे। वआखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
1: सुनते रहिए FM 101.1
2: के लिए बुरी सिफारिश करेगा तो उसके बोझ में से इस सिफारिश वाले पर भी बोझ आएगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सिफारिश की दो किस्में बयान फरमाई हैं। अच्छी सिफारिश से मुराद ये है कि ऐसी सिफारिश जो खुद भी जायज़ हो और जायज़ तरीके से की जाए। मसलन किसी का हक किसी के पास रुका हुआ है और वो इस साहिब हक का हक अदा नहीं कर रहा, ऐसी सूरत में अगर कोई इससे सिफारिश करा के इस साहिब हक को उसका हक अदा करा देता है तो इसे

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टर।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: दिस इज FM 101।
6: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: nuestro.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Get ready for non-stop hits and back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Get ready for non-stop hits and back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: tebe.
1: सुनते रहिए FM 101।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: के FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीरे आज़म कल से चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। कौमी असेंबली को आज बताया गया कि 2026 ता 2030 की कौमी गंदम पॉलिसी सूबों की मुशावरत से तैयार की गई है। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में तमाम जेर हिरासत कश्मीरी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रोजा बैन अक्वामी मैचों की सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम सर, आमीन। आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मुझे कहते हैं आरजे अली रजा। दिस इज एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मुझे कहते हैं आरजे अली रजा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101। आपका मेरा साथ रहता है हर जुमे की शाम 5 से 7 बजे तक। आप और मैं साथ साथ होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी मस्ती होती है। एक हफ्ते के लंबे बिछड़न के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनों के संग खूबसूरत लम्हात गुजार रहे होंगे। और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। अब वो गर्मी आ गई है कि हम कह सकते हैं हाँ यार मैनू गर्मी लग रही है। और स्टूडियोज में आते ही मैंने कहा यार वाकई आज गर्मी है। आप बताएं आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, जिंदगी के मामला कैसे चल रहे हैं। एफएम 101 को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम में शामिल होंगे। तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101L लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना पैगाम लिखेगा और भेज दीजिएगा 4471 पर। facebook.com/fm101 लाहौर का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, वहां पे आके अपने कमेंट्स कर सकते हैं। प्रोग्राम में बड़ा ही जबरदस्त सा, हम बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक लेकर आए हैं। उसके हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हवाले से हम बातें करेंगे और आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। कॉल अप कर सकते हैं 04221100101, हमसे राबते का नंबर है। जब भी गर्मी आती है हम कहते हैं यार गर्मी लग दी पई है, हमें गर्मी लग रही है, हमें बहुत गर्मी लगती है, ये गर्मियाँ क्यों आ गई, इस तरह की हम बहुत सारी बातें करते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं फिर हम कहते हैं सर्दी बहुत आ गई है। तो हर मौसम जो है हमारे पास मुयसर है, उस पर हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए और हर मौसम को इंजॉय करना चाहिए, हर मौसम का फल खाना चाहिए, हर मौसम की सब्ज़ी खानी चाहिए।

एनर्जी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे आप 4471 पे हमें मैसेज करके। अभी हम एक गाना चलाते हैं, प्रोग्राम का पहला ट्रैक चलाते हैं। अब हमें लाइव भी सुन सकते हैं www.radio.gov.pk और प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे रेडियो पाकिस्तान को सुन सकते हैं। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी।

0: दौलत पुजारी उष्ण व्यापारी वादों के कच्चे
1: आए
0: हाय।
1: दिल मेरे
0: छोड़ दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: one above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज एफएम 101.8 पाकिस्तान लाहौर। मुझे कहते हैं आज अली रजा और आप सुन रहे प्रोग्राम फन ऑन 101। हम कर रहे हैं बहुत सारा फन। आप और मैं साथ साथ रहने वाले हैं ठीक ठीक ठीक ठीक 7 बजे तक। ओए होए होए, बड़ा टाइम है ये ही 7 बजे। मैंने कहना टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। वाकई ऐसे होता है, टाइम बहुत तेजी से गुजरता है, बहुत तेजी से गुजरता है। देखो ना, हम बच्चे थे, जवान हो गए, बुढ़ापे की जान। टाइम तो मैं कहता हूँ भागता है। सो आज हमारा टॉपिक है जी कि बहुत सारे दोस्त वक्त पे नहीं ना आते तो फिर कोई ना कोई बहाना भी बनाते हैं। तो इस हवाले से भी ये टॉपिक बड़ा रिलेट करेगा कि आज हमारा टॉपिक है कि आपके दोस्त वो कौन सा बहाना बनाते हैं जो सुनकर आप फौरन कह देते हैं यार ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। अच्छा, हर ग्रुप में ना एक दोस्त ऐसा होता है जो जिसके कोई 2-4 बहाने पक्के होते हैं कि यार ये इसने कहना ही कहना है। अच्छा, एक जो बहाना होता है ना वो ये होता है कि अगर किसी जगह पे पहुंचना है ना तो उस दोस्त से हमने पूछा है कि यार कहाँ हो तुम। अगर उसने कहा यार मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसका 10 मिनट 1 घंटा होता। वो पहले ही सोच लेता, अच्छा 10 मिनट ठीक है यार, घंटा लग जाएगा इन आते आते। अगर वो आधा घंटा कहे तो इसका मतलब कोई 1.5 घंटा लग ही जाएगा इसको आने में। सो एक आधा दोस्त ऐसा ज़रूर होता है। और फिर वो दोस्त पता क्या कहता है कि यार मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ होता, अभी तक रेडी भी नहीं हुआ होता आने के लिए। वो भूल गया होता है कि यार मैंने कहीं जाना भी था। ऐसा भी होता है अक्सर। तो अपने दोस्तों के फनी से और मज़ेदार से बहाने हमसे शेयर करें, बल्कि अपने भी बहाने शेयर करें। आप कौन से बहाने मारते थे? जब आप स्कूल से छुट्टी किया करते थे तो फिर टीचर को अगले दिन जाके क्या कहते थे, कौन फोत हो गया? या मिस मुझे बुखार था, बहुत ज़्यादा बुखार था, खांसी भी थी, गला भी ख़राब था, मेरे पेट में भी दर्द थी। इस तरह के हम बहुत सारे बहाने मारते हैं। राइट अवे जी हमें मैसेजेस आ रहे हैं और हमें बड़ी ज़बरदस्ती हमारी आरजे एफएम 101 की सुन रही हैं आरजे रेहा अल्ताफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपका मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सुनते रहें। और कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमें सैयद इमरान गिलानी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। देन वी हैव रमज़ान गुजर विद अस, थैंक यू सो मच रमज़ान, आपके बहुत शुक्रिया। कहते हैं सलाम दुआ सुपर हिट आरजे। और हम ज़रा पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं किस किस के हमें मैसेज आए हैं। और जब तक हम पेज रिफ़्रेश कर रहे हैं, आप एक कमर्शियल ब्रेक सुनिए और उसके बाद लौट कर वापस आते हैं और बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, 101 के साथ रहना है। दिस इज़ Your very own RJ Ali Raza.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
7: Tune in to one above, FM 101.
6: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
7: Love FM 101.

ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। एक दफ़ा फिर से हम प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं और अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ मौजूद हैं। और गाने भी, कोई आप गाना सुनना चाहते हैं 5 बजे तक, कोई एक दो गाने मैं फरमाइशी चला दूंगा। अगर कोई गाना सुनना चाहता है, अगर कोई बहुत ज़ोर से गाना सुनना चाहता है तो मुझे ज़रूर बता दें, गाना उसके नाम हम कर देंगे। चलें आज फरमाइश चला ही देंगे यार, लेकिन गाना कोई दुखी नहीं होना चाहिए यार, दुखों से दूर रहना चाहता हूँ। और इनफैक्ट दुखों से दूर भी रखना चाहता हूँ आप सबको।

अच्छा जी, हमें सुन रहे हैं जी मोहम्मद अहमद कसूर से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। 101 के आप सुन रहे हैं, कहते मैं अली भाई फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 101 को सुनकर। थैंक यू सो मच, और बातें करें ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा जी, ठीक है जनाब, बातें कर लेते हैं। इरफान खान सुन रहे हैं, कहते जी नाइस शो। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर खोसो सुन रहे हैं जी हमें बलूचिस्तान से। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत शुक्रिया। और कागजी घाट, आय हाय हाय, कागजी घाट। अच्छा जी, अपना असल नाम भी बता देते तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता। आप हमें केपीके से सुन रहे हैं और फ्रॉम शब कदर केपीके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कागजी घाट हमें सुनने के लिए। अपना नाम भी बताओ ना यार, प्यारा सा नाम बताओ मुझे अपना, क्या नाम है आपका?

हमें साइमा सुन रही हैं गुजरांवाला से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका 101 को सुनने के लिए। वेल तमाम सामेईन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है आप सब के लिए भी, अगर आप रेडियो सुनते हैं और काफ़ी अरसे से रेडियो सुन रहे हैं और एक ख्वाहिश भी होती है कि यार हम भी रेडियो पे प्रोग्राम करें, हम भी एफएम पे जाएं, तो ये उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए ज़बरदस्त सा मौका है कि आप रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर के बावकार प्लेटफॉर्म से आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। तो अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारना चाहते हैं तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है।

पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा मौका है रेडियो पाकिस्तान एफ एम लाहौर का, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से क्लासेस होंगी और इंटर्नशिप प्रोग्राम कितनी देर का होगा और इसमें अहलियत क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और एक गाना चलाते हैं, छोटा सा गाना चलाते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद फर्दर बातचीत करते हैं।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Smile and dial 111 111 FM.

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे कहते हैं आरजे अली रजा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101, हमारा साथ रहने वाला है ठीक 7 बजे तक। और जैसे कि गाने पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर ने आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, और इस हवाले से हम बात करेंगे मैडम खदीजा मुराद से, जो कि सीनियर प्रोड्यूसर हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर की, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप?
0: मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ।
0: अच्छा मैडम, सबसे पहले हमारे सामीन को FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर की जानिब से आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से आगाही दीजिएगा, इनकी रहनुमाई कीजिएगा कि असल में ये प्रोग्राम है क्या।
1: जी बिल्कुल अली, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है उन तमाम नौजवानों के लिए जो गुफ्तगू के फन में महारत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम हम लोग FM 101 लाहौर पर ग्रैंड इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसकी इब्तिदा होगी इंशाल्लाह ताला उल अजीज 16 जून 2026 से। और सबसे बड़ी बात कि इसको समर्स में स्टार्ट करने का जो मकसद था वो यही था कि यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे बंद होते हैं और हमारे नौजवान ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इससे जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सके। तो इसके लिए थोड़ा सी डिटेल्स आपको बताती चलूं कि बेसिकली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करवाना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना सिखाना है। वो लोग जिन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, ऑडियंस को फेस नहीं कर पाते, और इस इंटर्नशिप के इख्तिताम जब वो इसका हिस्सा बनेंगे तो यकीनन वो ये सब चीजें अपनी पर्सनालिटी में से खत्म होते हुए देखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: आपका तलफ्फुज जो है इसमें वो भी, उसको भी बेहतर करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये ऐसा मौका है जिसे मैं अपने तमाम सुनने वालों को कहूंगी कि खास तौर पे नौजवानों को कि वो इसमें अपने आप को एनरोल करवाएं और इस इंटर्नशिप से।
0: मैडम मैं यही आपसे, बिल्कुल मैं यही आपसे पूछने जा रहा था कि कौन कौन लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हमारे सामने बताइएगा।
1: जी जी, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताती चलूं कि इसमें जो सबसे पहले की हद है वो 18 साल लेके 28 साल तक के नौजवान इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। एनरोलमेंट का तरीका नहायत ही आसान है, उसके लिए करना सिर्फ ये है कि आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 101 लाहौर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बिलखसूस इसमें आप फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज जो है वो विजिट कीजिए, वहां पे इस इंटर्नशिप के हवाले से हमारी पोस्ट ऑलरेडी वहां पे पोस्टेड है, वहां जाइए, उसी पोस्ट के अंदर जब डिटेल्स आप देखेंगे तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक वहां पर मिल जाएगा, सिंपली उसे क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल्स वहां पे आप पुट कीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए। एक का है मुख्तसर सा एक फॉर्म है और जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी हमें दरकार होगी और आपने इस तरह से उसे अपने आप को एनरोल करवा लेना है। इसी के साथ साथ ये भी बताती चलूं कि कुछ लोगों को जो हमारे मतलब नोटिस में आया है कि गूगल फॉर्म के जरिए अपनी एनरोलमेंट करवाना उसमें कुछ मुश्किलात दरपेश आ रही है, तो अपने ऑडियंस के लिए, अपने पार्टिसिपेंट्स की आसानी के लिए हमने उसी पोस्ट के अंदर PDF फॉर्म में भी अपना एक फॉर्म वहां पे रखा हुआ है, उसी पोस्ट में आप सिंपल वहां जाइए, उसे क्लिक कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए, फिर आप हमें स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर एम्प्रेस रोड पर भेज दीजिए बाय पोस्ट, वो हम तक पहुंच जाएगा और आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल हो जाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि लेट्स सपोज इसमें 50% या 100% या 1000 लोग अप्लाई कर देते हैं तो क्या वो सभी एलिजिबल हो जाएंगे, सबको हम इनवाइट करेंगे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, या उसमें से कोई फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सीट्स हैं, किस तरह से हम ये क्या क्राइटेरिया, इस हवाले से भी बताइएगा।
1: अली रजा आपका सवाल है क्योंकि माशाल्लाह से जो ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस हमें मिल रहा है उसकी बुनियाद पे अब हम इस नतीजे पर पहुंच कि हमें ला महाला नंबर ऑफ सीट्स जो है वो तय करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके कहने के ऐन मुताबिक अगर नंबर जो है वो मोर देन 100 हो जाता है, 1000s तक पहुंच जाता है, तो ऑब्वियसली इतने बड़े ग्रुप को लेकर चलना और उसमें क्वालिटी किस्म की इंटर्नशिप उनको प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो इस सारे सवाल का जवाब अगर मैं आपको मुख्तसर ये दूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की बुनियाद पर आप इंटर्नशिप का हिस्सा बन सकते हैं. जितना जल्दी हो वही बात है, अर्ली बर्ड कैच द फ्लाइज. टाइम को वेस्ट मत करें, जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवाएं और इस प्रोग्राम का इस सुनहरी मौके का हिस्सा बन जाएं.
0: बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा मैडम, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आपके पास आपका टाइम बहुत कीमती होगा लेकिन आखिरी सवाल का जरूर हमें जवाब दीजिएगा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कितना दौरानिया लाइव स्टूडियो में हम आके हमारे जो जितने लोग एनरोल होंगे यहाँ पे आके सीखेंगे और कितना दौरानिया इसका हम एक वर्कशॉप की सूरत में हम करेंगे.
1: ठीक, बिल्कुल. अच्छा, इसका मैं आपको जवाब ये देती चलूँ कि ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 16 जून से जी. और ये इख्तिताम पजीर होगा 15 अगस्त 2000.
0: सही.
1: हमारे पास ये 2 months की इंटर्नशिप है जिसमें हमारा पहला 1 मार्च होगा वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने इंटर्नीज को सिखाएंगे, बोलने के तरीके बताएंगे, उन्हें पूरा अवेयर करेंगे, उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे. आप यूं समझ लें कि उनका थ्योरी वर्क होगा सारा का सारा.
0: बिल्कुल ठीक है.
1: और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा यानी कि 15 जुलाई to onwards 15th of August वो 1 महीना हम अपने इंटर्नीज को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे. बाकायदा तौर पे स्टूडियोज में ले जाके उन्हें शोज असाइन किए जाएंगे, वो हमारे सीनियर आरजीएस के साथ बैठकर शो होस्ट करेंगे, उन्हें माइक का कॉन्फिडेंस देंगे और ये यूं समझ लीजिए कि 1 महीना थ्योरेटिकल वर्क है और 1 महीना प्रैक्टिकल वर्क है.
0: बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैडम आपने बताया. थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया मैडम. और जाते जाते मैं आज के टॉपिक पे भी जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज का जो हमारा मौजू है कि आपके दोस्त वो कौन सा बहाना बनाते थे जो सुनकर आप फौरन कह देते थे कि ये तो पक्का झूठ बोल रहा है. तो मैडम इस हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है.
1: अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है और इनफैक्ट आपका ये सवाल जो है ना ये मुझे नॉस्टैल्जिया में ले जाता है. और जब आपने दोस्तों का जिक्र किया तो लिटरली मेरे माइंड में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त वो आई है और दोस्त वो बहुत अच्छी थी लेकिन वो पार्टी स्पॉइलर हुआ करती थी.
0: अच्छा.
1: इस तरह से पार्टी स्पॉइलर होती थी कि हम जब मतलब स्कूल में होते थे या कॉलेज में होते थे तो हम लोगों ने एक रूल बनाया हुआ था. हमारा कोई 7 से 8 फ्रेंड्स का एक ग्रुप हुआ करता था और हम वो ग्रुप जो है ना मतलब के हर महीने में एक वन डिश पार्टी हमने जरूर रखी होती थी किसी भी एक फ्रेंड के घर पे.
0: सही.
1: और वो रोटेशन में फ्रेंड्स के घर जो है मतलब हमारा वेन्यू है वो चेंज होता रहता था.
0: बिल्कुल.
1: अब होता ये था कि 7-8 फ्रेंड्स को पता होता था कि डेफिनेटली मतलब हर महीने हमने एक गेट टूगेदर रखना ही रखना है इवनिंग में किसी भी वीकेंड पे. तो उसमें एक हमारी फ्रेंड ऐसी हुआ करती थी जो उस वक्त तो जब सब लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे यार मैं इस दफा ये बना के लाऊंगी या मेरे घर से इस दफा ये आने वाला है तो वो सब लोग ना उस वक्त तो बड़ा बढ़ चढ़ के वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे उस डिस्कशन में. लेकिन जब पार्टी का वक्त होता था पार्टी से ठीक 1 घंटा पहले उनकी कॉल आ जाती थी और मेरे घर में तो मेरे रिश्तेदार आ गए हैं और मेरे पास तो इस वक्त कोई है नहीं कि जिसके साथ मैं आ सकूं और मेरी तो मदर मुझे अलाउ नहीं करेगी तो बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती.
0: मेरे घर में तो मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, मेरे घर में तो मेरे रिश्तेदार आ गए मेरा रिश्ता देखने के लिए.
1: लिटरली होता होगा.
0: ठीक ठीक.
1: जो बाकियों का मूड भी खराब करती होती थी और ये बहाना तो हमें उसका हिफ्स हो गया था और हमें पता था कि शी इज नॉट गोइंग टू जॉइन अस. तो ये मतलब वो एक बहाना था जो लिखा पड़ा बहाना था और अंडरस्टूड बहाना था.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही.
1: और दूसरा यहाँ पे आके एक और चीज जो मैंने देखी है बहाने के मामले में, लाहौर चूंकि एक बड़ा शहर है और ट्रैफिक इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरी बिग सिटी, यहाँ पर जब किसी बंदे ने टाइम पर नहीं ना पहुंचना होता चाहे उसकी अपनी गलतियां उसमें शामिल हो लेकिन उसने सारा का सारा कसूर जो है वो ट्रैफिक पे डालना होता है. यार मैं तो निकला हुआ था, यार रास्ते में हूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. तो ये एक बहाना जो है ना ये भी आप कह सकते हैं कि लोग सिर्फ ट्रैफिक बेचारी को जरूरत से ज्यादा बदनाम कर रहे हैं जबकि उनका अपना फॉल्ट होता है,
0: जबकि उनका अपना
1: फॉल्ट होने में.
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. और ये बहाना अक्सर हम शादियों में सुनते हैं कि जब बरात जब लेट हो जाती है ना यार राशि इतना सी साड़ी बस बस गई साडा ड्राइवर मोटरवे पे चला गया.
1: वेरी ट्रू वेरी ट्रू.
0: ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका
1: आपसे
0: बात करने के लिए.
1: थैंक यू सो वेरी मच.
0: अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके.
0: अल्लाह हाफिज. राइट जी, ये थी हमारे साथ मैडम खदीजा मुराद, सीनियर प्रोड्यूसर एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, जो हमसे बात कर रही थी रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 लाहौर आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से। आई होप आपके जो क्यूरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। और देर मत करें, जल्दी से अप्लाई कर दें और एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के ऑफिशियल फैन पेज पे जाएं, वहाँ आपको हमारी जो पोस्ट है वो मिल जाएगी और आपको सारी मालूमात वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या अहलियत का क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो देर मत करें, जल्दी से जाएँ और अप्लाई करें। और अभी हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानी बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक गाना चलाएँगे। आपने कहीं नहीं जाना, हम तो जा रहे हैं लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, 101 के साथ साथ रहना। इस गाने के बाद लौट कर वापस आते हैं, सुनते रहिए एफएम 101।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: स्माइल एंड डायल 111 111 FM।

0: ओके जी लिसनर्स वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मुझे कहते हैं आरजे अली रजा, बड़े प्यार और बड़े मान से कहते हैं आप लोग ही तो कहते हैं, आप मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, मेरे साथ साथ मौजूद हैं। कौन कौन मुझे सुन रहा है, कौन कौन मेरे साथ साथ मौजूद है, 04221100101 हमसे रब्ते का नंबर है। आपकी लाइव कॉल्स को ऑन कर दिया गया है, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बल्कि बहुत सारी बातें कर सकते हैं आप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके दोस्त वो कौन सा बहाना बनाते थे जो सुनकर आप फौरन कह देते थे कि ये तो पक्का झूठ है। सो आज की पहली कॉल लेते हैं, देखते हैं किसने हमें कॉल पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: पहली कॉल मिल गई, कौन सा जादू किया है आपने रिमशा?
1: मैंने क्या जादू किया है, आप जैसे ही आपके वो न्यूज़ खत्म हुई मैंने कॉल मिलाना स्टार्ट कर दिया, कॉल मिल गई।
0: अच्छा वाह वाह, आपको बहुत पहली कॉल मुबारक हो, आपको वेलकम करते हैं। प्रोग्राम सुन रही हैं आप, कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम?
1: बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी गुफ्तगू सुन रही हैं, कहा इतना मजा आ रहा है, आप बिल्कुल एनर्जी से शो करते हैं आप।
0: चलें थैंक यू सो मच रिमशा, बहुत शुक्रिया आपका ऐसा बोलने के लिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा ना।
1: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कहा, आपने मुझे साइड पे जाके कहा था।
0: रिमशा बहुत तेज हो आप। अच्छा रिमशा मुझे ये बताओ कि आप आपकी दोस्त या आप वो कौन सा बहाना बनाते थे जिसको सुनकर फौरन ही कह दिया जाता था कि ये तो पक्का झूठ।
1: जी जी भाई, मेरी एक सहेलिया से बकायदा हुआ करती थी, जिस तरह आप
0: बकायदा
1: उन्होंने बताया था। वो इस तरह की आदतें करती थी,
0: बाकायदगी के साथ करती थी,
1: यानी हाँ जी बिल्कुल पक्का झूठ, सफाई के साथ।
0: सफाई के साथ क्या झूठ
1: बोलती थी? वो मुझे कभी भी ना कॉल नहीं करती थी, जब भी मैं से कॉल करती थी तो
0: मिस कॉल करती थी,
1: हाँ मिस कॉल देती थी खाली, यानी सिर्फ वो भी एक दिया करती थी। अगर जब से कॉल करती थी मैं कहती थी तुम कभी कभार कॉल तो कर लिया करो, कहती रिमशा मैं ऐनी कॉल आ कितनी तुझे चुकी कोई।
0: उसके पास बैलेंस नहीं होता होगा ना, इसलिए मिस कॉल वो दे देती होगी आपको।
1: हाँ मिस कॉल भी देती थी, और बकायदा उसके अंदर ये आदत हुआ करती थी कि ना अगर जैसे कि अब दोस्तों ने आपस में कोई इवेंट रखते हैं, यानी कोई मुलाकात होती है, ये किसी के
0: इकट्ठे होना है
1: जी, इकट्ठे होना है, तो बकायदा उसे ना मैं 2 घंटे पहले बता देती थी कि शबनम, उसका नाम उसका शबनम था, उसको बुलाती प्यार से मैं शलजम थी।
0: अच्छा शलजम, ठीक है
1: जी, तो मैं ऐसे बताती थी कि शबनम इस टाइम पे तुमने आना, हालांकि इवेंट होता था 12 या 1 बजे का, लेकिन तो मैं बकायदा 10-11 बजे का बोलती थी, और अच्छा। वो बकायदा उसने पक्की बात
0: नहीं, ये तो आप भी गलत करती थी ना कि उसको 2 घंटे पहले बताती थी, कम से कम 2 दिन पहले तो बताती है उसको।
1: पता है ना उसने, अगर मैं पूरा टाइम पर बता देती ना, उसे जब आना था तब सारा कुछ खत्म हो जाता।
0: अच्छा नहीं 2 दिन पहले बता देती तो वो हो सकता है टाइम पे आ जाती,
1: वो टाइम पे नहीं आती थी बकायदा, जब मैं उसको अगर मैं 10 बजे का भी जल्दी बोल देती थी ना, उसने बकायदा 12-1 बजे ही आती थी।
0: बिल्कुल ठीक
1: है, बकायदा
0: बकायदा। ये बकायदा का पहाड़ा बड़ा हुआ आपने आज, थैंक यू सो मच रिमशा कॉल करने के लिए। और कुछ कहना?
1: आपने पूछ रहे थे कि हम क्या झूठ बोलते हैं, स्कूल में काफी झूठ बोले हैं, नानी फोत हो गई थी, दादू फोत हो गई थी, तबीयत खराब थी, पेट में दर्द था, बारिश आ गई थी,
0: मुझे मेरे होनहार लिसनर्स का पहले से ही पता था।
1: जी जी ये सब करते हैं ना, जब ये बकायदा ऐसा होता है कि भाई कि छुट्टियां जब भी बच्चे करते हैं, जब कोई स्कूल में पेपर वगैरह हो मैथ का इंग्लिश का, तो मैं इसी में छुट्टियां करती थी दोनों में।
0: ठीक है रिमशा बहुत शुक्रिया,
1: कहती थी कि एक बच्ची ऐसी होगी जो छुट्टी करेगी।
0: और वो आप थी
1: और मैं थी, और झूठ बकायदा मेरा पकड़ा भी जाता था।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।
1: ओके भाई अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 04221100101 देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
2: अब बिस्मिल्लाह करिए। वालेकुम सलाम अली अली रजा, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी अब्दुल हमीद साहब?
2: अली भाई तीसरा जमा है गया, मेरी कॉल ही नहीं लग रही यार, इतना आज रक्षा जंदा
0: तुसी कॉल के को गलत नंबर ते नहीं डायल कर दे रहे?
2: ना ना यही नंबर है, TRIPPER 1 TRIPPER 0 1 0 1 FM 101 FM 101।
0: नंबर ते बिल्कुल ठीक है, मेनू लगदा तुसी ना बटन को सही नहीं दबांदे रहे, तदली कॉल नहीं मिली तुहाडी। जी जी मैं पहचान लिया, माजे तो बोल रहे हो ना?
2: नहीं माजे नहीं बोल रहा,
0: अहमद
2: बोल रहा, अब असद बोल रहा, बरसी वाला
0: फैजान
2: नहीं यार, चलो फैजान ही लड़ा, कोई होया
0: अमीजा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि आपके दोस्त वो कौन सा बहाना बनाते थे?
2: वापसी कॉल कर ले भी, कदी किसी ने नहीं बहाना लाया भी यार मेरे को बैलेंस नहीं है।
0: जिंदगी अच्छा हमीद साहब, जिंदगी कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलिया जेरा बहाना मारदा होए?
2: ओ
0: दसो ना जेरे नहीं मार दे ओ ते ठीक है, ओ याद नहीं आ रहा
2: यार। हुन अली रजा भाई ने तो पुरानी बचपन से कुछ हो गया भावे ते हुन ते आ रही कोई गल नहीं।
0: चलो आज बर्फी बनाई है?
2: हां बर्फी बनाई है, बर्फी तो पेड़ का तोड़ के
0: चलो आधा किलो खा लो मेरे लो।
2: मैं खा ली जी, एक डाली में खा ली है,
0: पैसे भी मेरे लो दे के जेब भिजवा लेना। बहुत
2: शुक्रिया,
0: सब ठीक जी।
2: ताड़िया मोहब्बत असल राजा राजा चौधरी बोदी जाटल ती मुगल मानद भाई नियाज भाई साडी फरी भैन सारेन सलाम करा
0: जी। बहुत शुक्रिया, रब रखा जी। राइट वे जी, हमें मैसेजेस आ रहे हैं और हमें कॉल्स भी आ रही हैं। देखते हैं हमें किसने मैसेज भेजा है। हमें फैज़ान ने मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच फैज़ान, बहुत शुक्रिया। हमें सुन रहे हैं जी रमज़ान आपको बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी सुन रहे हैं शाहदरा से, कहते हैं जी बल्ले बल्ले जी बल्ले बल्ले, नाइस रेडियो शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। हर किसी का अंदाज़ होता है ना अपनी मोहब्बत को बयान करने का। अली रज़ा साहब सॉन्ग लगा दो। अच्छा जी सॉन्ग लगा देते हैं जी। रमज़ान गुज्जर साहब आपके गाने की बिल्कुल समझ नहीं लगी और कहते हैं जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और रमज़ान गुज्जर कहते हैं जी सुपर हिट आरजे मैडम डॉक्टर रेहा अल्ताफ साहिबा कहाँ बिजी हैं? अच्छा जी ठीक है ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं बिजी होंगी, आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी, एफएम पे वापस आ जाएंगी, आज मेरा प्रोग्राम भी सुन रही हैं। और अगर अभी भी सुन रही हैं तो रमज़ान साहब आपका मैसेज उन तक पहुंच चुका होगा और हम भी उनको कहते हैं कि हुन आ जाओ वापस। नज़ीर कोसो प्रोग्राम बेहतरीन है, थैंक यू सो मच जी, आप भी बहुत बेहतरीन हो। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम भाई जी, क्या हाल है?
0: जी भाई जी ठीक है, आप सुनाएं।
3: मोहम्मद सदीक बोल रहा हूँ शेखुपुरा से।
0: जी शेखुपुरा से आप बात कर रहे हैं, शेखुपुरा में हिरन मीनार के अलावा कुछ है देखने वाला?
3: तकरीबन कोई इतना खास नहीं है, बस ये की मशहूर है
0: हिरन मीनार है या जिना पार्क है? एक
3: नहीं चीचों की मलियां हर डाले पावर स्टेशन है, एक बहुत मशहूर है।
0: अच्छा वाह वाह वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी बहाना मारा है आपने या आपके कोई दोस्त ने बहाने मारे हों?
3: मैं बताता हूँ, अभी रमिशा जी काल में सुन रहा था।
0: अच्छा
3: तो एक बहाना मारा दोस्त, तो वो जब भी छुट्टी आता ना कहता कि मेरी दादी मर गई सर जी, मुझे छुट्टी दे दो।
0: अच्छा
3: जब उसकी रिटायरमेंट होने लगी ना तो उन्होंने छुट्टियां देखी उसकी, तो उससे कोई 3-4 छुट्टियां दादी के बहाने ली थी कि दादी मर गई है।
0: अच्छा
3: उन्होंने बोला जी अलग रिटायरमेंट आपको दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि ये आपने 4 छुट्टियां मारी हैं।
0: यार हो सकते दादा अबू ने 4 शादियां की हों।
3: हाँ वही तो बता रहा हूँ, तो उस वो भी चलाक था, कहते जी मेरे दादे की 4 शादियां हुई थी इसलिए 4 दफा दादी मरी है।
0: 4 दफा
3: तो हमारे गांव के मामा से थे, उनके 2 बेटे तो वो डोमिसाइल बनवाने गए, कुदरती तौर पर उनकी वो डेट बर्थ में ना सिर्फ 6 माह का फर्क था।
0: अच्छा
3: अच्छा
0: गलती हो गई।
3: हाँ गलती हो, पहले पिछले दौर की बात
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्या हुआ?
3: पैंट की उम्र में। अच्छा वो ना डोमिसाइल बनवाने गए, किसी ऑफिस में गए तो एक पहले चला गया, जब दूसरा गया तो उससे बोला जी आपके ना आपका कोई भाई भी है? बोला जी हाँ वो नसीर अहमद है। अच्छा तो ये आप दोनों भाइयों की उम्र में 6 माह का फर्क है, ये उसमें जाएं यूनियन काउंसिल में तो ये सही करवा दिलाए।
0: सही।
3: अब दूसरा जो गया ना वो कहता है यार तुमने मुझे वापस कर दिया तो इसमें क्या मसला है। उन्होंने बोला जी आपकी उम्र में छह माह का फर्क है इतनी। उसने भी यही बना, उसने बोला यार फिर क्या हुआ, मेरे बाप ने दो शादियां की, वो छह महीने अपनी माँ के हाथ करा। ऐसे बहाने चल जाते हैं।
0: ठीक है सदीक साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने की। और कुछ कहना?
3: सर दर्द और पेट दर्द का जो बहाना है ना,
0: ये तो बड़ा पुराना है।
3: इतने किसी को ये नजर भी नहीं आता और सामने वाला मजबूर भी हो जाता कि वाकई इसको दर्द होगा,
0: इसको को मसला होगा। ठीक है सदीक साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक गाना जो कि आजकल दिलो दिमाग पे छा रहा है,
4: रात के अंधेरे,
0: दिल किया इस गाने को प्ले करूं। ये गाना मेरी तरफ से मेरे नाम।

0: जी कौन है मेरे साथ?
1: अली रजा साहब,
0: ओहो
1: नाम ही काफी
0: रमजान
1: है मुझे, रमजान अनवर गुजर कहते हैं, मॉडल टाउन लाहौर से
0: वेलकम
1: वेलकम
0: वेलकम।
1: अर्ज किया है कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे हल्का अहबाब में, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे हल्का अहबाब में, खुशियां मेरी मुझसे छीन कर कहते जाओ खुश रहो तुम। बहुत सी दुआओं के साथ नंबर वन नेशनल रेडियो स्टेशन हिट FM 101 रेडियो पाकिस्तान के सब रंग सुपर स्टार आरजे अली रजा साहब के संग सुनने वाले खुश आम
0: कोई गल नहीं, सुनने वाली खूबसूरत समातों
1: को रमजान गुजर
0: मैं बिल्कुल ठीक जी हो जाता है फिर हो जाता है, ऐसे हो जाता है, रट्टे लगाए होते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुजर साहब मुझे ये बताएं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आज का, एंजॉय कर रहे हैं?
1: हमेशा की तरह, हमेशा की तरह सारा आपका तो इंतजार होता है, आपका तो इंतजार करते हैं, और डॉक्टर रेहल साहब साहब का इंतजार करते हैं, ईद आ गई है, उनसे गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब आप ईद के ईद शो करती है, बड़ा मेहरबानी, ईद आ गई है, हमारी ईद को खूबसूरत कर दें।
0: बिल्कुल
1: अली रजा साहब के साथ, अली रजा साहब के साथ
0: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। गुजर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ये बताएं कि आप बहाने मारते हैं?
1: सर नहीं सर,
0: आपका कोई दोस्त?
1: सर वो ऐसा होता है कि मेरे दोस्त बड़े नोटी है, वो सारी दुनिया तो बराबर नहीं होती, तो वो कहता है जैसे आपसे बोतल पी ली, मैं कहना कभी नहीं हो सकता मैं तुम्हें बोतल पिया, तो फिर ऐसा होता नहीं यार मेरी एड पर रखी, मेरे से ड्यूटी टाइम कोई गुम हो जाती है भूल जाता हूँ, या कोई चाबी कोई अपनी रखी चुप गुम हो जाती है, या हैंड फ्री का अगर आपका शो तो रहा हूँ तो वह हैंड फ्री या मोबाइल रख दिया, तो उसका काम है कि मेरी कोई ना कोई शायद कब्जे में कर लेंगे।
0: अच्छा।
1: तो करके मुझे ब्लैकमेल करना कि अगर पियोगे बोतल तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको ना कभी भी हम नहीं देंगे।
0: अच्छा,
1: तो फिर ऐसे ही वो नाटक करते हैं मेरे साथ,
0: शरारते
1: तो
0: हैं
1: फिर मैं, हाँ फिर मैं वो मजबूर हो जाता हूँ।
0: वैसे तो आप भी बहुत शरारती हैं।
1: नहीं नहीं सर, नहीं
0: नहीं
1: सर, वो नहीं नहीं, तो बाकी एक ख्वाहिश है बस, जिस दिन आप ना आए प्लीज मुझे बता दिया करें।
0: अच्छा।
1: मैं कोशिश करूंगा तो फिर आपकी जगह पर शो कर देंगे,
0: मेरी जगह पे आप शो कर लिया करेंगे जिस दिन मैं छुट्टी करूंगा। फिर ऐसा करते हैं आप ही शो कर लिया करें आके।
1: नहीं सर मुझे काल ही किसी ने नहीं करनी, मुझे वैसे ही किसी ने भी नहीं करना, बस ये डर है मुझे और ये कौम है मुझे 25 साल का, जिसकी वजह से मैं आज तक नाकाम तुझे मैंने बीए नहीं किया।
0: नहीं नहीं इंशाल्लाह आपको हम कभी ऐसा मौका बना तो जरूर इनवाइट करेंगे, और आप बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे लाइव बात कीजिएगा फिर आके, ठीक है
1: सर? मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, माइक्रोफोन बंद बंद के स्टेशन पर, लाहौर स्टेशन पर आपके साथ, ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात होगी, मैं उस दिन का दिल से इंतजार।
0: बस आप कोई ऐसा इवेंट हो ना तो फिर हमसे रब्ता कर लीजिएगा ना, फिर अगर पॉसिबिलिटी हुई कुछ ऐसा हुआ तो हम जरूर आपको इन्वाइट करेंगे।
1: सर अल्लाह पाक आपका इकबाल बुलंद करे, आपकी बिजली टीम के लिए, मैडम खतीजा सीनियर प्रोड्यूसर खतीजा मुराद साहब आई थी आपकी बदम में, उनको खुश आमदीद कहता हूँ, आप आए रौनक आई, बहार आई हमेशा की तरह,
0: वो
1: कहते चश्मे बदूर, अल्लाह पाक आपको कुछ रखे, अली रजा साहब आपका अखलाक बहुत अच्छा है जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं आपके शो में आना, अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया की आसानी और ख्याल नसीब करे, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: थैंक यू सो मच। ये ऑल राइट जी, हमें सुन रहे हैं जाहिद खान। जाहिद खान क्या कहते हैं, हाउ आर यू सर, शो इज ग्रेट, आपके शो की टाइमिंग क्या है? मेरे शो की टाइमिंग हर जुमे की शाम 5 से 7। और रियाज भट्टी सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच जी वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृता चौधरी हैं, सुन रहे हैं और फूल भेज रहे हैं, कहते हैं जी वाओ पॉपुलर रेडियो शो, माई फेवरेट शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का। हमें रिजवान सुन रहे हैं, अली भाई नाइस प्रोग्राम है, मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच रिजवान, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ठीक है 04211100101। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। ठीक वाह, तू सुना तेरा की हाल वाह, तगड़ा।

0: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: Tune in to One Above, FM 101.
3: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
4: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
8: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: Smile and dial 111 111 FM.

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आरजे अली रजा की आवाज़। और ईद, ईद उल अजहा भी आने वाली है और ईद की भी आमद आमद है। इस हवाले से भी तैयारियां जारी और सारी होंगी और बहुत सारे लोग मंडी से, मवेशी मंडी से हो आए होंगे और अपना जानवर जो उन्होंने ईद उल अजहा पर कुर्बान करना है वो ले आए होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे, यार मैं आज जाऊँ या कल जाऊँ, गर्मी बहुत है, रात को जाऊँगा, शाम को जाऊँगा, सुबह सुबह जाऊँगा, इस कश्मकश में होंगे। वेल, ईद उल अजहा पर एक खुशी ही और होती है, एक वाइब्स ही और होती है, मतलब दिल बहुत खुश हो रहा होता है। आपने जानवर कुर्बान करने होते हैं और अपने प्यारे जानवर कुर्बान करने होते हैं, जिन्हें आप मोहब्बत से पालते हैं, जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिन्हें आप खाना खिलाते हैं, उनकी धूप छाँव का ख्याल रखते हैं, उनके दाने पानी का पूरी आपको फिक्र रहती है, वो जब कुर्बान करते हैं सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए, वो ये जब फरीज़ा हम अंजाम देते हैं ना, तो दिल को एक सुकून जो मिलता है, वो सुकून वैसे हमें कभी नहीं मिलता। 04211100101 हमसे रابطے का नंबर है। आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम अली भाई, खुशामदीद
0: जी। एम रजा चौधरी, कैसे हैं आप?
1: सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। एम रजा प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं प्रोग्राम आपका सुन रहा हूं। मैं बहाना नहीं लगाया कि मैं नहीं सुन रहा, मैं सुन रहा हूं।
0: सुन रहे हैं, चलें ये तो जबरदस्त हो गया।
1: सर बहाने से आप टॉपिक पे ही चलते हैं सर। पहले
0: तो जी जी,
1: मेरे रिकॉर्ड आज नीचे पूर्व से लेके अब तक मैंने नहीं बहाना लगाया कभी भी किसी मामले में।
0: ठीक है,
1: कुछ लोग मुझे ज्यादा बिलीव करते हैं रजा चौधरी ना, कि वो क्या कहते हैं बहाना नहीं लगेगा, जो हकीकत है वही बताएगा। हाँ, स्कूल में मुझे एक या दो दोस्त ऐसे मिले थे जिनके मुझे बाइक और बस से मुझे घर जाने पड़ते थे, कि वो बहाना लगा लेते हमारे घर में जनाब मेहमान आ गए या मेरे पेट में दर्द हो गया फला फला, छोटा कुछ नहीं था ऐसा कुछ।
0: सही,
1: तो उनके आगे उनके लिए कुर्बानी करनी पड़ती थी घर में भी आके ना कुछ। वो ये होता था, एक हमारा बड़ा अहम मैच था, फाइनल था हमारा गाँव का
0: जी जी।
1: एक मेरा बड़ा दोस्त है, वो अच्छा प्लेयर, जैसे हम एक अच्छा प्लेयर हो ना वो ज्यादा नखरे ज्यादा दिखाएगा। तो ना उसने मुझे बहाना लगाया, यार अगर भाई आज मैंने नहीं जा सकता, मेरे पाँव में ये हो गया फला हो गया, तो कुछ मुमान भी आ रहे हैं यार ऐसे ना कर।
0: सही,
1: लेकिन नहीं गया ना, जैसे ही ना वो हम बाइक पे निकले ना, उसका भाई मिल गया।
0: अच्छा।
1: यार वो किधर है आपका लाडला? कहता यार वो तो फुटबॉल खेल रहा है।
0: अच्छा।
1: फुटबॉल खेल रहा है, किधर खेल रहा है? ना वो ग्राउंड में गया तो वो ग्राउंड में भाई फुटबॉल खेल रहा है। मैं यार अपना मैच छोड़ के ये फुटबॉल खेल रहा है, तो मैंने जाकर पीछे जब शर्ट से पकड़ा, मैं कहा बहाने बाद ये क्या ड्रामा, कहता रहा भाई आप किधर भी आ गए, मैं क्या छठा बहाना आज नहीं चलना, आज मैं तेन फड़ लिया।
0: वाह क्या बात है,
1: तो
0: क्या बात
1: है। बहाने भी अपनों से होते हैं, मोहब्बत भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: ऐसे। क्लास के जितने भी दोस्त सभी कॉल पे आए, उनके लिए बहुत सी दुआएं, इधर जहाज कुर्बानी
0: थैंक यू
1: आने वाली है, तो हमें चाहिए कि अपनी अनाव को भी कुर्बान करें।
0: बिल्कुल
1: जनवर को हमने कुर्बान करने ही करने है, तो सारे रिक्वेस्ट किए मैंने, जा तुझे माफ किया,
0: जा तुझे माफ किया, ठीक है मैंने कर दिया।
1: जाते जाते आपके लिए छोटा सा शेयर
0: जी,
1: के चल पड़ी है मेरी दुआएं अब अर्श की जानब, चल पड़ी है मेरी दुआएं अब अर्श की जानब, अब जल्दी से तू मेरे होने की तैयारी कर।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त।
1: ये गांव साल सुनने वालों के नाम,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है मेरे साथ?
2: सलीम टेलर।
0: अच्छा, सलीम टेलर आ चुके हैं। सलीम क्या हालात हैं इस दफा, कपड़े वगैरह सी दिए हैं सारे के? इस दफा इतना रश नहीं
2: लगा रहे इस दफा। इस दफा बहाने वाला कोई नहीं लगा
0: रहा, बहाना कोई नहीं
2: लगाए थे
0: छोटी ईद पे, तो जाहिर बात है बड़े का सूट जो है वो छोटे के लिए सी देते हैं, छोटे का सूट बड़े के लिए सी देते हैं, मतलब ये मामला
2: आपको भी पता चल गया है।
0: अच्छा आप बताएं कि बहाना कभी लगाया आपने या आपके किसी दोस्त ने?
2: हाँ अभी वो खाना खा के आए नान पकौड़े।
0: अच्छा,
2: तो कहता है तू दुकान से चल मैं आ रहा।
0: ठीक है,
2: तो वो 1.5 घंटे बाद आया, हमने चाय पीनी थी, बाद कहता है मैं सो गया जाके कमरे में।
0: अच्छा। वो डर गया होगा ना कहीं बिल मुझे ना देना पड़ जाए।
2: अच्छा आपने
0: जी
2: अभी बात की स्टार्टिंग में,
0: क्या बात,
2: मैं अपने बच्चों के साथ खेल के आया हूँ घर में।
0: अच्छा,
2: कपड़े वगैरह लेके आए, वेड़ा लेके आए।
0: माशाल्लाह, वाह वाह।
2: वो बच्चे, मेरी बेटी इतना वो पट्टे खिला रही थी तो इतना हंस रही थी, मैं भी उसके साथ छोटी छोटी जो उसकी खेल थी ना, तो बड़ा खुश हुआ माशाल्लाह।
0: अरे वाह वाह वाह,
2: बकरे को प्यार करना।
0: हाँ बिल्कुल, बच्चों को बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी उनको ना उनका शौक होता है कि यार हम, हमारे घर में बकरा आए, हम उससे खेलें, उसको बाहर लेके जाएं, उसको चारा खिलाएं, तो ये बच्चों का एक शौक होता है।
2: एक फरमाइश है हमारी
0: थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम,
2: पूरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, एक मर्शल ब्रेक हमारे पास आई है, उसकी जानी बढ़ते हैं, वापस आते हैं, बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। गाना भी चलाना है, आपकी कॉल्स भी लेनी है, कहीं मत जाइएगा, 101 के साथ साथ रहिएगा।
3: Tune in to One Above, FM 101.
4: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
8: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: स्माइल एंड डायल 111-111-FM।
4: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
8: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: ओके जी लिसनर्स, एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मुझे आरजे अली रजा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी।
2: पहचान तो गए हो गए
0: जी। चीकू
2: जी, कैसे हो आप पप्पू?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चीकू मीकू, कैसे हो आप?
2: जबरदस्त।
0: कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम, ये तो बताओ।
2: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी देर कर दी ये मेहरबान कॉल उठाते उठाते।
0: देख लो फिर, उठा ही लिए कॉल आपकी।
2: हुन भजना जाओ लेके।
0: नहीं नहीं, मैं शॉपर में डाल के रखूंगा, यहीं पे बंद करके जाऊंगा।
2: अच्छी बात है ना, शॉपर वैसे होना भी चाहिए पास। अगो वीर आ रही ना वड्डी।
0: हां वड्डा शॉपर ते ओ भी डबल
2: दोवेरा लगे करांगे इकट्ठे। ऐसे 150 शॉपर करना है। मैं 150
0: कर लिया।
2: हाँ।
0: अच्छा,
2: भी नहीं,
0: नीले रंग का छापर किया ना या ब्लैक?
2: नहीं भाई, चिट्टा, नीला, काला, पीला, जेड़ा भी आता है मैं करी गया।
0: हर रंग का किया आपने?
2: क्यों भला
0: क्यों किया?
2: दस भी नहीं भरन गए की?
0: यार मेरी बात सुनो सही है नहीं वो आप आपके साथ वही होना है कि वो जैसे चलगोजे लेने जाता है ना, कहता है यार ये किस तरह के जी हैं, वो कहता है यार ये 8,000 रुपए के जी हैं, अच्छा यार मुझे 10 रुपए के दे दो, वो एक दाना पकड़ाता है कहता है यार शॉपर में डाल दो, वो शॉपर देता है, फिर कहता है शॉपर डबल कर दे
2: टीचर आए नहीं थे तो हम तीन दोस्त थे तो हमने कहा यार सर पे आए नहीं ऐसा करने हैं निकलने हैं ग्राउंड जाने हैं जाके खेलने हैं तो चले गए हम।
0: ठीक है।
2: अब मुझे नहीं पता था कि उसी ग्राउंड में मेरे चाचू वगैरह भी खेल रहे हैं।
0: अच्छा।
2: उसी स्कूल ये बढ़ रही हैं पाई हैं बैग जिड़ा ना सी किसी बंदे को रखवाए ने तो खेल रहे हैं मेरे चाचू ने आज कान तो फड़े मैं तू इतने की कर रहे हैं चाचू जी मैं इतने कह रहा तुम कितने वो असि तो इतने खेल जाने अच्छा वो साढ़े सर जिड़े ना अज नहीं आए थे अज छुट्टी थी
0: अच्छा
2: चलो तुम खेडो।
0: ठीक है।
2: मैं कहा ठीक है वो भी बाद नहीं करेंगे लो जी वो फ्री हुए जब खेल गए हम खेल रहे थे उन्होंने मैंने बढ़ाया मोटरसाइकिल के पीछे सीधे स्कूल।
0: अच्छा ठीक
2: है। सर साढ़े उस दिन आए लेट आए बस फिर उस दिन सर सन सर दे हाथ पे डंडा सी
0: सही सही सही
2: मैं साबा तो फिर बाकी दो आए अगले दिन फिर उन्होंने भी बारी
0: मैं फिर आपने फिर आपने कभी ये बहाना नहीं बनाया होगा कोई
2: नहीं बनाया उसके बाद मैंने जब भी लगाया मैंने फुटे ही लगाए हैं फिर बहाना नहीं लाया अगले दिन आके पावे मार खाती फिर मैं फुटे ही लाए हैं
0: बिल्कुल सही
2: मैं भी ठीक था
0: हां बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है नॉटी बॉय
2: बस ये तेरे का मामला हुआ भाई।
0: ठीक है थैंक यू सो मच चीकू
2: कॉल करने के लिए लवली टॉकिंग टू यू
0: बहुत शुक्रिया स्टे ब्लेस्ड
2: बाय ब्रदर
0: अल्लाह हाफिज। अच्छा जी हमें मैसेज भेजा है जी हमें एक मैसेज भेजा है साइमा ने गुजरांवाला से थैंक यू सो मच हमें शाजमीना सुन रही हैं लाहौर से भगवानपुरा से थैंक यू सो मच हमें हसन सुन रहे हैं जी लाहौर से हसन आपकी बहुत शुक्रिया और हमें कौन सुन रहा है हमें अब्दुल्ला सुन रहे हैं मंसूरा लाहौर से थैंक यू सो मच अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया आपका खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम
0: जी क्या है आपका नाम
10: जी इस खूबसूरत नाम वाले को कहते हैं मोहम्मद
0: अहसन खान क्या हाल है अहसन आपका ठीक हो
10: बकर से बात कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है जी जबरदस्त
0: बकर में बहुत गर्मी होती है बकर में
10: बिल्कुल बहुत गर्मी होती है लेकिन इस वक्त बहुत खूबसूरत मौसम है
0: अच्छा वाकई
10: ढल रहा है बिल्कुल गर्म होने के वाह वाह वाह
0: और मेरी आवाज आपके कानों में रस घोल रही है
10: रस घोल रही है
0: आया है
10: इसके अलावा मेरे सामने बड़े खूबसूरत से दरख्त लगे हैं उनके ऊपर परिंदे बोल रहे हैं
0: वाह वाह
10: और साथ में आपका शो और वाह वाह वाह बना रहा है
0: क्या खूबसूरत आपने मंजर कशी की है
10: अब मुझे नहीं पता कि आपको इस वक्त आमों की जरूरत है या चाय की जरूरत है
0: या यार मुझे ना वाकई चाय की बहुत जरूरत है और मुझे इतनी भूख लगी है मैं आपको बता नहीं सकता
10: मुझे लगता है कि अगर इस टाइम पे आपको जुल्फी भाई चाय बना के दे देना तो मजा ही दुबाला
0: हुए हुए हुए यार जुल्फी एक वैसे हुआ करता था कहीं पे
10: बस फिर वो जुल्फी या तो कहीं छुट्टी कर गया लेकिन हमारे दिमाग में जुल्फी अभी भी फंसा हुआ है
0: जुल्फी फंसा हुआ है ना आपके दिमाग में पता है ना वो कौन सा जुल्फी था
10: बहुत याद करते हैं जुल्फी भाई को बहुत मोहब्बत वाले
0: बिल्कुल
10: अगर कहीं हमारी वो आवाज सुन रहे हैं तो आप तक जरूर पहुंचेंगे क्योंकि वो भी रेडियो टीम का हिस्सा है
0: पहुंचे मेरे तक पहुंचे जल्दी से
10: सलीम भाई का और हमीद भाई का रजा भाई का इन सब का शुक्रिया इनकी खूबसूरत बातें और मुझे लगता है कि आपको भी ना किसी ने कहा है कि मैं 5 किलो आम लेके आ रहा हूँ फिर पार्टी करते हैं और फिर वो बहाना लगा के चला गया
0: हाँ ऐसे ही है
10: आपने सोचा है कि इस वीकेंड पे फिर मैं बहाने पे ही टॉपिक रख लेता हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल ओ वो आप थे पता है आपने मुझे ये कहा था
10: हाँ मैंने कहा था बिल्कुल ठीक है आप बजा फरमा रहे हैं इस वक्त शहर बखर में तो इतने आम नहीं होते शायद
0: बखर में मुझे पता है क्या होता है बखर में सरसों होता है सरसों का ऑयल होता है
10: सरसों का आयल होता है, चना होता है,
0: चना होता
10: और जो सबसे मजेदार चीज है बखर की वो है रांझे का गोश्त।
0: अच्छा हाँ, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल।
10: आजकल अगर आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर,
0: जी मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको बहाने तो नहीं मारते थे आपके दोस्त या आप? जल्दी से बता दें, टाइम हमारे पास बहुत कम है।
10: कोई बहाने वाला नहीं है, मेरी मेरी बारी आई है तो टाइम कम हो जाता है
0: यार। बस अब देखो शो खत्म होने वाला हो गया ना, आप एंड पे आए हो यार।
10: अच्छा जी,
0: इंतहा हो गई है प्यार की।
10: प्यार होगी, प्यार की गल इस तरह की मेरे बिच या मेरे दोस्तों में कोई बहाने वाला कोई नहीं, लेकिन एक मेरा कजन है जो हर टाइम ही बहाना लाई रखता है।
0: अच्छा,
10: सच्ची गल है, ओनू मैं गल जेडी कहां ना वो कहंदा है ठीक है ओके हो गया,
0: ओके
10: हो दूसरी गया। तरफ जाओ ते ओ पतली गली चो लांघ के ते किसी और जगह पहुंच जाओ।
0: अच्छा,
10: बस फिर गुजारा करना ही पैंदा सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही, यानी कि आपका वो कजन बहानेबाज है।
10: हां बड़ा बहानेबाज है भी मेरा, हां मुंबर फिर बंदा कुछ कह ही नहीं सकता।
0: हां ये भी बात है।
10: बाकी सब दोस्तों को मेरा सलाम, जितने सुन रहे हैं
0: थैंक यू सो मच,
10: जिनके नाम रह गए उनसे माजरत और जिनके बोल नहीं है उनको शाबाश,
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी एक गाना चलाते हैं, अली जफर की आवाज़ है और खूबसूरत सी आवाज़ है, खूबसूरत सा गाना है, इस गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, एफएम 101 के साथ साथ रहिएगा। 10 मिनट रह गए हैं यार, टाइम तो जैसे भागता है। ओ जाने जाना मर जाऊंगा। अच्छा जी ये ज़बरदस्त सा गाना आप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। ये गाना उन तमाम लिसनर्स के नाम जिन्होंने मुझे गानों की फरमाइश की थी, आई एम सो सॉरी मैं आपकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सका, लेकिन आप ये गाना सुनें, इसको एंजॉय करें। ये गाना तमाम खूबसूरत समातों की नज़र।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: ओके जी लिसनर्स, एक दफा फिर से हम प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे आरजे अली रजा कहते हैं। आज हमने पूछा आपसे कि आपके वो कौन सा दोस्त था जो बहाने मारता था और फिर आपको पता चल जाता था कि यार ये तो पक्का झूठ है। जिसके साथ साथ ना पाकिस्तानी घरों में, हमारे घरों में कुछ ऐसे ख़तरनाक और डेंजरस किस्म के अल्फाज और जुमले बोले जाते हैं जो सुनने के बाद पूरा घर एक अलर्ट मूड में चला जाता है। अच्छा, वो चंद जुमले मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक पहला जुमला ये है कि जब अब्बा जी कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, बंदा फुल सस्पेंस में चला जाता है और बंदा फुल एक डर का माहौल पैदा हो जाता है कि यार पता नहीं केरी कल करनी है। अच्छा, एक और वो लाइन है कि जब कोई बहन भाई बताता है ना अब्बू घर आ गए हैं, फिर बंदा जिस भी हालत में बैठा है बंदा सीधा पदरा हो जाता है, अपनी किताबें खोल लेता है कि यार अब्बा जी ने आते ही पूछना है पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और एक जो लाइन है वो ये भी होती है कि ये मोबाइल अभी मेरे हवाले करो। इस लाइन पे तो जैसे जान ही निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम
5: जी, कौन है मेरे साथ?
6: वाबदा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मीर से मोहम्मद हनीफ शाह।
5: जी हनीफ साहब, आपने कभी कोई बहाना लगाया?
6: बहाना तो पहले तो लगाते थे बचपन में, लेकिन अभी बचपन है क्या बहाना लगाएंगे।
5: बचपन में वैसे भी बहाने लगाने जो के रहता नहीं बंदा।
6: हाँ बिल्कुल, वैसे बहाना लगाना नहीं चाहिए, लेकिन हम तब बहाने करते थे जब पढ़ाई पे जाना होता था।
5: अच्छा, पढ़ाई पे बहाने करते, बिल्कुल ठीक।
6: यार मसला, मेरी कंप्लेंट नोट कीजिए कि लाहौर का आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है।
5: लाहौर का आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है, आप लाहौर में इस टाइम?
6: नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे कश्मीर में हूँ।
5: हमारे पास आवाज़ आप कहाँ पे सुन रहे हैं?
6: मैं कश्मीर से।
5: नहीं नहीं, आप 101 लाहौर कहाँ पे सुन रहे हैं? हमारी वेबसाइट से सुन रहे हैं या ऐप से सुन रहे हैं?
6: जैज रेडियो।
5: अच्छा, चलें चेक करवाते हैं।
6: ठीक है, ओके चलती थी, लेकिन आवाज बिल्कुल अभी कम
5: आ रही है। ओके चेक करवाते हैं। ओके थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। आखिरी लकी कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लकी कॉलर। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल लास्ट पे आए हो, क्या हाल है? ठीक हो?
6: बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रैफिक भी जबरदस्त है और आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी क्लियर आ रहा है।
5: बहुत शुक्रिया।
6: ये कहना चाहता हूँ, मैं जब छोटा था, जब स्कूल नहीं जाता था, मैं झूठ बोलता था कि मेरा पेट में दर्द है,
5: पेट में दर्द है।
6: मैं यही बहाना ज्यादा बना।
5: और कभी कभी ऐसे भी होता था कि पेट में दर्द नहीं होनी, तो जब ये बहाना बनाना तो सच में पेट दर्द शुरू हो जाता था।
6: हाँ ये बात है। और इस चीज मैंने नोट किया हुआ है, अगर आप जिम कसम या अभी कसम आप महसूस करें कि मैं अचानक से जब खराब है, मैं बीमार हूँ, एकदम आपको बीमारी लग जाएगी।
5: हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके अल्लाह। ये थे जी हमारे आखिरी कॉलर, अल्हम्दुलिल्लाह खैर। थैंक यू सो मच तमाम लिसनर्स का, तमाम खूबसूरत सामीन का आज का प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए। अब आपसे ईद पे मुलाकात होगी और अभी ये एक सरप्राइज़ है कि ईद के किस दिन मुलाकात होगी और किस टाइम में मुलाकात होगी, इसका ये सरप्राइज़ भी बहुत जल्दी आपको जो है ना आप पे रिवील होने वाला है और आपको पता चल जाएगा। वैसे हम ईद के शोज़, ईद की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के प्लेटफॉर्म से जारी और सारी रहेंगी। आप FM 101 के साथ साथ रहिएगा, हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करते रहिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं। सो ये ईद FM 101 के साथ साथ आपने गुजारनी है, हमने भी आपके साथ साथ ये ईद गुजारनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। आरजे अली रजा साइनिंग आउट सेइंग बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: commercial break. Stay with us.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
4: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
3: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: गल सुने इत्थे बे
1: सुनते रहिए FM 101
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: No mind, Cali, summer cum laude.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा गण कैन किणा गण किगरा किड़ किड़ किड़ किड़।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: घर पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
1: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
0: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
2: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
3: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
7: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
8: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: hasta luego.
1: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
2: Papa, मैंने सुना है खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मंसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
6: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: ریزن ویلکم بیک ٹو دا شو، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اٹس اے سرپرائز کال اینڈ لیٹس سی ہو از ود اس۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام جی فرحان، کیا حال آپ کا؟
0: اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
1: اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ نسوانی آوازوں کے درمیان سے ایک مردانہ آواز کہاں سے آ گئی۔
0: ہاں، اتنی خوبصورت آواز جو مسحور کن آپ کو سحر میں مبتلا کر دے، آپ ایک نئی دنیا میں چلے، عجیب و غریب دنیا میں چلے جائیں، ایسی آواز۔
1: اچھا جی، ایسا ہے کیا؟
0: میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ میں تو ابھی آواز کے جو رس گھولتی آواز میرے جو کانوں تک پہنچ رہی ہے نا، یقین جانے کہ میں اس میں مست ہوا ہوں۔ آپ ایسا کریں نا، اب آپ میری تعریف کریں نا، میں نے آپ کی اتنی کی ہے اسکرپٹ کے مطابق، بات اسکرپٹ کے مطابق ہونی چاہیے، اسکرپٹ سے باہر نہیں آپ نے جانا، اب آپ نے میری تعریف کرنی ہے، میں نے آپ کی ہے، آپ کی آواز کی، آپ کے انداز کی۔ سر اسکرپٹ سے باہر نہیں جانا، سر اسکرپٹ سے باہر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، برابر جا رہے ہیں، برابر جا رہے ہیں۔ آپ لاہور کی اس کس خوبصورت سی سڑک کے اوپر ہیں، کہاں پہ ہیں، کیا منظر کیا ہے؟
1: اس وقت میں فل رش میں ہوں اور ٹریفک پوری طرح سے بلاک ہے۔
0: اچھا،
1: اور اس وقت میں ملتان روڈ کے اوپر ہوں، شاہپور کانڈیا کے پاس جو منڈی لگتی ہے،
0: ہاں ہاں،
1: اس ایریا سے گزر رہا
0: ہوں۔ اوکے، آپ بھی منڈی جا رہے ہیں کچھ خریداری کے لیے جا رہے ہیں؟
1: انفارچونیٹلی میں
0: تو بات سنیں نا، آپ اس سوسائٹی کے ساتھ کچھ 10-12 جانور رکھیں، لگائیں، کوئی کام بھی کریں نا، کوئی فائدہ اٹھائیں اس جگہ پہ رہنے کا، پارٹ ٹائم 11 بجے
1: ایک تو 101 پر کون شادی ہوگا؟
0: نہیں، لیکن باقیوں کا بھی تو کچھ کریں نا سر، ہیں آپ دیکھیں پارٹ ٹائم، اگر آپ 11 بجے گھر جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کچھ کام کاج کریں تھوڑا سا، مطلب آپ کو پیسے نہیں چاہیے، آپ کو اچھے نہیں لگتے
1: پیسے؟ الحمدللہ پیسے بہت، اللہ کا بڑا احسان،
0: ماشاء اللہ، تو تھوڑے سے دے دیں پھر ہمیں۔ ویسے نا، ویسے میں بتاؤں، پیسے جو ہے نا وہ ہمارے ایک انکل ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ پتر آج کل نا پیسے جڑے نے نا کسی نے اگر تو دینے نے نا اس تو پہلے نہ ہی کام کر لے۔ میں کہ جی کی؟ وہ کہتے ہیں اپنے پیسے نوں اگ لا دے۔ میں جی یہ کی گل ہوئی؟ کہتے ہیں یار تم نے آگ لگا دی ہوگی نا، تمہیں سکون ہوگا، تسلی ہوگی کہ میں نے میرے پیسے جل گئے ہیں، میرے پیسے سڑ گئے ہیں۔ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا، حتیٰ پیسے دینا بڑا اجر ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، صدقے سے زیادہ ثواب ہے قرض کا، لیکن واپسی کا پھر آپ تصور مت کریں کہ آپ کو واپس ملیں گے، واپسی پھر آپ بھول جائیں، بھول کے آپ
1: دوبارہ کبھی گفتگو کریں گے۔ مجھے اپنے ابا جی کی ایک خوبصورت سی بات یاد آئی، جب کبھی میں اپنے ابا جی کو کہتا تھا نا کہ ہمیں پیسے دیں، تو کہتے تھے نا پنجابی میں کہتے تھے میں نے چونک کے رکھ کے بیچا ہو، تو میں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، میں نے کہا ابا جی وہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں کتنی دیر کھا لوں گا، 6 مہینے سال، تو پھر اس کے بعد پھر آپ کی یاد دوبارہ آئے گی کہ ہمارے ابا جی ہوتے تو ہمیں ہمیشہ ہی دیتے۔ تو ابا جی ہاتھ پڑے کہتے ہیں خیر کام تو تم نے بات تم نے پتے کی تھی۔
0: ہاں ہاں، اللہ سب کے لیے آسانی کرے جی، پردے رکھے سب کے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر والے۔
1: ٹاپک آپ کا بڑا انٹرسٹ چل رہا تھا، کامیابی والا جی، آپ سے بات کر رہے تھے
0: جی، پلیز،
1: تو میں نے چاہا کہ میں کچھ ٹاپک پہ بات کروں آپ کے ساتھ نا۔
0: اچھا
1: جی جی، فرحان آپ بتائیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس نا 3 جنریشن سے سب موجود ہیں، ایک جنریشن ایکس موجود ہے، ایک جنریشن وائی موجود ہے، اور ایک جنریشن زی موجود ہے جو اس وقت مارکیٹ میں ہو چکی ہوئی ہے اور اپنی اسٹرگلنگ لائف وہ گزار رہے ہیں سارے کے سارے۔ جنریشن ایکس اپنی اسٹرگلنگ لائف گزار جا چکی ہے ان کی، اور اوبیسلی کامیابی کے لیے جو محنت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ایک بنیادی شرط سمجھی جاتی ہے
0: جی جی،
1: تو جو محنت ہے ये काफी नहीं होती, इसके लिए हमें वाक्य चाहिए होते हैं, तारीख चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, हमारा अलानी माहौल इसको तय करता है, हमें सुकून इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके साथ साथ फाइनली जो चीज किरदार अदा करती है ना, वो हमारी किस्मत किरदार अदा करती है, ठीक है। और जो मुसलसल मेहनत है और साबित करती जो है, ये हमेशा कामयाबी का दरवाजा खोल देती है। बहुत बड़ी मिसालें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हम बड़े बड़े ब्रांड्स की अगर बात देखें, कहानियां सुने, तो हमें लगता है कि दुनिया का बड़े ब्रांड्स में से एक बंदा है जिसने अपने आखिरी उम्र में जाके कामयाबी हासिल की थी और उसने एक बड़ा ब्रांड काम कर लिया था। तो ये जो मेहनत है ना, मुसलसल मेहनत, ये फाइनली कामयाबी का रास्ता खोल देती है या दरवाजा खोल देती है। तो जनरेशन एक्स जो थी, जिनको हम कहते हैं जो 1965 से 1980 के दरमियान पैदा हुए हैं,
0: आपकी दौर
1: ये चाहते थे कि इनको अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले और मुस्तकिल नौकरी मिले, अपना घर हो, माली तौर पर ये इंतकाम हो जाए। ये लोग खानदान की जिम्मेदारियां पूरा करने वाले लोग थे और माशरे में ये जनरेशन इज्जत चाहती थी कि हमें इज्जत का मुकाम बहुत ज्यादा मिले। और आमतौर पर जो इस दौर के लोग थे, वो सिर्फ एक ही पेशे के साथ मुंसलिक होते थे और फिर उसी को लेके आगे चलते थे और उसी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते थे। तो इनकी मेहनत जो थी वो जिस्मानी भी थी, अमली मेहनत भी थी, और इनके पास मौके बड़े महदूद थे, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस दौर में। आपको पता है कि ना इंटरनेट था, ना कोई और इस तरह की कोई सहूलत मौजूद थी, मुकाबला नस्बतन काम, लेकिन रास्ते बहुत
0: कंपटीशन ही था, बहुत ज्यादा
1: कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और फिर कहीं जाके ये कामयाबी जो है वो हासिल करते थे। इसके बाद आती है जनरेशन वाई। अच्छा, जनरेशन वाई जो है वो उसके बारे में, वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल जनरेशन रही हमारी। और ये जनरेशन जो है, इनको अच्छी तालीम तो मिली, इनका कैरियर ग्रोथ भी हुआ, जाती आजादी भी मिली, और इस जनरेशन को बैरून ममालिक जाकर काम करने के मौके बहुत ज्यादा मिले।
0: बिल्कुल ठीक,
1: बहुत ज्यादा। और लेकिन क्या था कि इनके इस जनरेशन के दौर में विरोध, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर पैदा हो गए, बहुत सारे इंजीनियर पैदा हो गए, बहुत सारे लोग एक ही प्रोफेशन में आ गए, तो बेरोजगारी में बड़ा ज्यादा इजाफा हुआ था, महंगाई इनके दौर में बहुत ज्यादा बढ़ी, मुकाबले बड़े सख्त ज्यादा हो गए। और क्या होता था कि इनका डिग्री के बावजूद इनके लिए ना नौकरी का बड़ा मसला रहा था,
0: ठीक है।
1: और ये फिर क्या हुआ कि धड़ाधड़ इन्होंने बाहर की तरफ भागना शुरू किया और ये बाहर की तरफ चले गए। तो ये नस्ल बहुत मेहनत तो करती रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इन्हें जो है ना वो माशी इस्तेमाल जो है ना वो नहीं मिल सका था। और ये पिछली नस्ल की नस्बतन ये थोड़ी आसान तो रही है, लेकिन ये अनप्रडिक्टेबल रही है। ये जनरेशन जो है वो मतलब उस तरह से नहीं फोकस नहीं कर सकी कि मैं हमें कैरियर में करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। कामयाब तो हुए, लेकिन उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से आज की जनरेशन जी हमारी कामयाब हो रही है,
0: ठीक है।
1: हमारी जो जनरेशन जी है, इनको बहुत जल्दी शोहरत मिल गई, ऑनलाइन कमाई के जराए इनके लिए खुल गए, ये आजादी है अपनी पसंद का काम करना चाहती है, सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है, आजाद राय मतलब जो इनकी आजादी थी अपनी बात कहने की वो इनके पास बहुत ज्यादा है, और ये बड़ा मतलब बोल्डली अपनी बात को हाईलाइट कर देते हैं, बता देते हैं, माशरे के ऊपर ले जाते हैं, इनको बता,
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेसिव है,
1: नकल परवान हुई है, परवान चढ़ी है। तो दुनिया की जितनी भी जदीद सहूलतें हैं इनसे ये बहरामंद है, ये जानती है कि हमें अपना काम कैसे लेके आगे चलना है, कैसे बढ़ना है। और मैंने बल्कि इस जनरेशन के अंदर एक चीज और नोट की है कि ये जनरेशन एक्स के मुकाबले में ज्यादा जल्दी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, उनसे आगे निकल चुके हैं, और समझदारी में और अक्ल में और शौर में मुझे ये लगता है कि जैसे ये जनरेशन एक्स को क्रॉस कर चुके हैं,
0: ठीक है।
1: तो ये लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि इस जनरेशन के पास एक चीज और बड़ी मतलब जो बड़ी खराबी वाली थी वो ये थी कि इनका ज़हनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंपटीशन इनके पास बहुत बढ़ गया, कंपैरिजन बहुत बढ़ गया, उसके पास फलां चीज है, उसके पास फलां टेक्नोलॉजी है मेरे पास नहीं है, उसके पास फलां फोन है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास भी होनी चाहिए। और उन चीजों को हासिल करने के तवद्दो में ना इनके हाँ मुसलसल ज़हनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, खानदानी रवाबत टूट गई, इनके दोस्तियां खत्म हो गई, इनके हाँ इनके अंदर लाइफ के अंदर जो है ना खुशी खत्म हो चुकी थी है। और ये खुशी को टेक्नोलॉजी के साथ और चीजों के साथ करते हैं।
0: बिल्कुल इसे, बिल्कुल इसे। आप लगता है मंडी में दाखिल हो चुके हैं ना?
1: अच्छा
0: निकल आया।
1: तो आसान कामयाबी इन्होंने हासिल की है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने खोया बहुत कुछ।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: तो कामयाबी वैसे मतलब अगर हम देखें तो मुसलसल मेहनत का ही नतीजा होती है,
0: ठीक है। और मौके सबको मिलते हैं
1: और बगैर मेहनत के आपको कामयाबी नहीं।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूँगी जी, इस वक्त डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, आरजे डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। और सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत डिस्क्राइब करने का कामयाबी को और जनरेशन को। और आपने हमारी जनरेशन के ऊपर जो है ना बहुत से बहुत मुश्किल में डाल दिया। एक वैसे मुझे आपकी बातों से लगा है कि हमारी जनरेशन जो है ना एक कन्फ्यूज नेशन है, कहीं पे नाकाम भी है, कहीं पे कामयाब भी है, और कहीं पे तजबजब का शिकार भी है। और वो दौर भी असल में एवोल्यूशन का दौर था ना, एवोल्यूट कर रही थी चीज़ें, आ रही थी नई नई चीज़ों में, इख्तरा आ रही थी, डिजिटलाइजेशन हो रही थी, चीज़ें बदल रही थी, तो इस वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रही है ना। अब सपोज़ उस दौर में ये होता था कोई MBA कर रहे तो सब बंदे MBA करना शुरू हो गए, कोई कोई BBA कर रहा है वो BBA करना शुरू हो गए। अब बच्चे जो है ना दे आर मोर फोकस एंड दे आर मोर कॉन्फिडेंट एंड दे आर मोर यू नो अपनी मंजिल की जाने। वो
1: बहुत सारी फील्ड्स बहुत सारी आ चुकी है ना, मतलब वो 4-5 फील्ड से निकल के अब हजारों फील्ड में जा चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है ना।
0: शॉर्ट टर्म्स बहुत आ गए ना एक्चुअली ना, शॉर्ट टर्म्स चीज़ों ने भी लोगों का थोड़ा सा उनका टेम्परामेंट लूज कर दिया, थोड़ा फोकस उनका हुआ है, ये भी बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव भी है सब चीज़ें हैं। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आप मंडी से गुजर चुके हैं खैरियत से, आप अब घर पहुँचे, आपने भी किया, मैं टाइम पास करा किसी ना किसी तरह है। गुड वे, गुड वे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह
1: हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। Alright, जनाब दैट वाज डॉक्टर नदीम रहमान साहब हमारे साथ थे, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है, और बड़ा विजन के साथ ही अपने एक्सप्रेशन अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे ना। आई एम सो ग्लैड के माशाल्लाह हमारे जो कोलीग्स हैं अल्लाह ताला ने उनको बड़ा विजडम भी दिया है और एक्सप्रेस करने का एक अंदाज़ भी इनका बड़ा खूबसूरत है। सो जनाब एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे, उसके बाद हम लौट के आएंगे, आप लोगों की कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं और आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। सो जनाब अली कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, माई वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, माई स्वीट हार्ट एज ऑलवेज, सियालकोट से हैं ये आरजे अली कुरैशी, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर ऑफ रेडियो पाकिस्तान FM 101 सियालकोट। सो अली भाई थैंक यू सो मच, सलामत रहें, खुश रहें, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इतनी मोहब्बत से हमारे शो को सुनते हैं। सो स्टे ट्यून, यू आर ट्यून इन टू FM 101, मुझे कहते हैं फरहान खान।

0: ठीक है।
1: नजर रखे माँ बाप।
0: और बड़े क्या करें, बड़े भी तो एडिक्ट हुए हुए हैं मोबाइल
1: के, भी
0: सिर्फ बच्चे ही तो नहीं ना।
1: कुछ असल में काउंसलिंग होनी चाहिए, समझाने वाला लाजमी जेन होना चाहिए कि बचाएं एक दूसरे को। ग्राउंड खाली हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, मोबाइल देख देख के सत्यानाश कर लिया है।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: तो बहरहाल खैर, इस चीज को हम इशू नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने एक अच्छी सोच रख के चलना है।
0: बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है सलीम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात
1: की आपकी। हमारी आपकी आवाज आ रही है इस्लाम की, कोई गीत लगा दीजिएगा
0: जी। गीत अभी देखें, बड़ा जबरदस्त, इस गीत की मुझे रिक्वेस्ट भी की थी आपके नाम और इफ्तिखार साहब, हमें सुने सोना ग्रुप
1: की पूरे मैनेजमेंट को सलूट पे करते हैं कि इतने चार्ज जाते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी बात करके जाते हैं
0: सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद,
0: पाइंदाबाद। और जनाब एक ट्रैक में से लाऊंगा जिसकी मुझे रिक्वेस्ट भी की गई थी, और हाँ थोड़ा सा टेम्पो हमारा चेंज हो जाएगा।

0: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
0: Papa, मैंने सुना है खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: था। मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: There's music, and then there's magic. What about?

0: अब वक्त मुझे ये कह रहा है कि वक्त करीब आज पहुंचा है। अब्दुल वहाब साहब बड़े गौर से मुझे इस टाइम देख रहे हैं। ओके जनाब, आप की कॉल्स भी लगातार हमें मौसूल हो रही हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पूरे पाकिस्तान भर से जहाँ जहाँ आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं। इस 101 FM लाहौर की आवाज़ को तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ निभा रहे हैं। जल्दी से कुछ कॉल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक इजाज़त भी चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं
1: बड़ी जल्दी आपने सोचा कॉल लेंगे, थैंक यू।
0: मैं बस देख लें।
1: क्या बात है,
0: क्या बात है, क्या बात है, आप बताएं क्या बात है?
1: बस यही बात है,
0: यही बात है। हाँ
1: क्या बात है,
0: यही बात है कि क्या बात है और क्या बात है कि यही बात है, लेकिन ये बात क्या है आज तक नहीं पता चली है। गल्ला जो गल कोई नहीं है।
1: नहीं वो आप रहमान का शो सुना करें, अधूरी बात।
0: अच्छा उसमें क्या होता है?
1: अधूरी रहती है बात का पता नहीं चलता।
0: अच्छा गल्ला चो गल कोई नहीं है
1: ना। आहो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था।
0: एवी गल बद जांदी है।
1: हां गल कंदी तने तो मने मुंह कटक मते शेर हो कना।
0: हां मैं पिंडो करना तने मैं
1: ऐसी गल में फिर रुक ना पे ना।
0: हां मोती वदनी नहीं चाहिए गल है ना,
1: वदनी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे डाक और इमशा कह रही थी ना थुड्डे इमशा पूरी पूरी गल दसनी थी। रोड़ा एवी नहीं गोल हुंदा तू देखो।
0: वैसे मैं बताऊं बात होती कुछ भी नहीं है, लेकिन बात को हम जो है ना वो इतना बढ़ा देते हैं कि वो बढ़ते बढ़ते ना पहुंचते पहुंचते बात की बात कुछ पहुंच जाती है और फिर पता चलता है बात ही कुछ नहीं थी।
1: बस सी गल नु मोड़दे रहंदे ना कदी आई नु ते कदी आई नु।
0: मां मेरा बड़ा
1: फिर उठता कुछ हो जांदा।
0: सही बात है।
1: बाकी टॉपिक पे कहूंगी। अच्छा हां मुझे एक बात कहनी थी।
0: पहले सोच लें आपने टॉपिक पे कहने के कोई बात कहनी थी आपने?
1: दोनों चीजें करनी है
0: फिर सोच लें।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: हां थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया।
1: मैंने उस दिन बड़ी कोशिश की डॉक्टर शो में कॉल नहीं मिली, फिर के बाद रहमान के शो में मेरी बिल्कुल एंड पे कॉल नहीं थी। तो मैंने उसमें भी कहना वो सुकत टेंपल कुछ और हो गया, फिर मैंने वसीम भाई के शो में आपको विश किया।
0: अच्छा बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपका याद।
1: मैंने कहा इस तरीके फरहान के फरिश्ते ही सोने हुए।
0: नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपने याद रखा। अब आपने दूसरी बात एक और करनी थी।
1: जो हमारे हक नवाज भाई आते हैं, हक नवाज भाई मैं आपसे बिल्कुल नाराज है, परेशान ना हो, आप बहुत अच्छे भाई हो मेरे। फ्लो इतना ज्यादा होता है बातें करते करते कि बहुत से नाम रह जाते हैं, बहुत से भूल जाते हैं, लेकिन मैं नियतन सबको सलाम दुआ कह रही हूँ।
0: अच्छा जबरदस्त।
1: और रिमशा है और जितनी भी हमारी बहनें आती हैं और ये हक नवाज भाई, शहजाद भाई, नदीम, वो जितने भी सारे मेरे भाई आते हैं सबको। और नदीम और रहमान सब की गुफ्तगू मैं सुन रही थी, उनकी तो हंसी माशाल्लाह की मजे की होती है ना। तो अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अच्छी क्लियर उन्होंने चीजें बताई
0: है ना,
1: कैसी कमाल। देखना बिल्कुल न्यू जनरेशन किधर किधर कैसे कैसे, और ये हकीकत है जो उन्होंने सारा कुछ ऑब्जर्व किया बताया। और मैं ये कहूँगी कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है फरहान की किस्मत जो है हम कहते हैं बड़ी मेहनत से मिलती है, आप कामयाबी हासिल करते हैं बड़ी मेहनत से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वहाँ किस्मत ही काम करती है,
0: वहाँ पे ठीक ठीक
1: बिना कुछ किए देखे कुदरत कि उनकी किस्मत ऐसी चमकती है कि हैरानगी। फर्दन फर्दन बताती है, हमारे एक जानने वाले थे बड़े दूर के, उनके हालात बड़े नाजुक से थे। वो ऐसे थे जानने वाले कि मेरी अम्मी उनसे कपड़े सिलवाती थी उनकी वालदा से, तो वो खातून के मियाँ चले गए, वैसे 3-4-5 बच्चे थे उनके, 4 बेटे 1 बेटी, एक ही कमरे में कराए थे वो लोग रहते थे। वो खातून कपड़े सीती थी, फिर पता चला कुछ अरसे बाद कि वो तो रातों रात अमीर हो गए हैं जी। हो गए वे
0: माशाल्लाह।
1: वो कैसे हो गए जी? उनके बेटे का 50 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला।
0: अच्छा
1: हाँ, आज से काफी सालों पहले की बात है। तो 50 लाख उस वक्त बड़ी रकम थी। उस लड़के ने उससे काम शुरू किया, चारों भाइयों ने मिलकर काम किया और उससे उसको और बढ़ाया काम कर करके, मेहनत करके।
0: माशाल्लाह।
1: किस्मत ऐसी थी कि देखिए उनको बैठे बैठाए जैकपॉट लगा।
0: माशाल्लाह।
1: कुछ भी नहीं किया, उसे प्राइस बॉन्ड से वो देखें। तो किस्मत यहाँ पे देखे ना, किस्मत ने कैसा साथ दिया, कैसा पलटा खाया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज इस वक्त वो लाखोंपति लोग। तो अब उन्होंने उस किस्मत ने तो काम किया, 50 लाख मिल गया, लेकिन उन्होंने उसको दबोया नहीं, मेहनत,
0: ये बात है असल में, उन्होंने मेहनत की ना उसको लेके चले हैं,
1: मेहनत की और आज वो दुगना चुगना करके बढ़।
0: अच्छा ना, ये एक और चीज़ है ना कि जिन लोगों को विरासत में जायदाद मिलती है, पैसे मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको लेके चलते हैं, जिसको संभाल सकते हैं, जो उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत, मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है, ज़्यादातर लोगों को देखा है जिन्होंने मेहनत नहीं की ना, और जिनको विरासत में मिल गया, बना बनाया मिल गया, वो उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, ज़ाया ही करती है। कम लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन ये कि अब जिन्होंने खुद मेहनत की होती है ना जी, और दिन रात मेहनत की होती है, उनको कदर होती है,
1: कदर होती है। बिल्कुल, पहले होता था ये होता ना कि पहले बच्चे माँ बाप के पैसे पे लगे रहते हैं, कोई कदर नहीं आ जाती, जैसे खुद कमाना शुरू होता है ना तो फिर उन्होंने बजट बनाना शुरू कर देना।
0: बिल्कुल,
1: मैंने ये ऐसे करना, मैंने ये ऐसे करना, नहीं नहीं ये बचाने हैं, ये मेरे इतने पैसे क्यों लगे, मैं क्यों ऐसे करूँ।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: उस वक्त हिसाब किताब आ जाते हैं, कहते हैं ना अब्बा अब्बा कहने से तो वो क्या चंगे से अब्बा अब्बा को आया थे,
0: फिर पता लग गया अब्बा क्यों,
1: फिर पता लग गया ना।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: तो फिर इसी तरह ही होता है।
0: लेकिन मेहनत मेहनत तो शर्त है ना, मेहनत तो करनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी का जैकपॉट लग गया तो सबका जैकपॉट लगेगा,
1: मेहनत नहीं लगता, मेहनत तो शर्त है जी कामयाबी के लिए।
0: सबका नहीं लगता, किसी किसी का लगता है, और जिसका लग गया बस उसका लग गया, बस ये नहीं कि तोड़ा लग जाएगा। मेरा तो आज तक नहीं लगे, मैं तो जो भी मैंने तो कभी कोई शॉपिंग करो ना, वो कूपन देते हैं, तो मैंने कहा यार मैंने ना दियो, मेरा कुछ नहीं निकलना, कूपन जाया कर रहे हो।
1: अच्छा मैं एक दफा सोच रही हूँ, मैं कहती हूँ काश को मेरा जैकपॉट लग जाए, कुछ ज्यादा सारे पैसे ही निकल आए, तो मेरी कजन कहती है हाँ तेरा कोई प्राइस बॉन्ड निकला है तो तेरे ये काम हो जाए, मैंने कहा हाँ है ना मेरा प्राइस बॉन्ड ही निकला है बड़ा सारा, तो मेरा कैसे निकला है,
0: नहीं लिया। अच्छा जी, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है मुझे लग रहा है, और थैंक यू सो मच अनिला, खुश रहे, सलामत रहे,
1: थैंक
0: यू, अरे जनाब दैट वाज अनिला विद अस लास्ट कॉलर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, अल्लाह आप सबको हम सबको बहुत आसानी अता फरमाए, और एडवांस में ईद मुबारक आप सबको, और अल्लाह ये ईद हम सब के लिए बाइस रहमत हो, बाइस बरकत हो। ये बड़ा बरकतों वाला महीना है ज़िलहज का महीना, जिसमें ये 10 दिन बड़ी रहमतों बरकतों वाले हैं। अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगे, अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने नसीबों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अल्लाह हम सबको और आप सबको दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। फरहान खान साइनिंग आउट, अल्लाह निगेबान एंड लव टू ऑल।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: और
1: तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे।
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فَيَوْمَ